0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
1: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Like a Gold।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
0: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
2: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
3: Bollywood ke legend kalakar, sirf Laika Gold par.

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खा

0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
1: वॉटफोर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
2: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
2: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
2: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
1: विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 07300999।

0: 8823.
1: Book your table today.
2: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
0: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून. बी देयर.
2: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज. देयर्स अ चांस.
3: अजी ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा.
1: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026. शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर. ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास. फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड. फ्रॉम £3,299 per person. Visit maharajatours.co.uk ya call 07956154846.
4: London में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
0: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Be part of a historic grand opening.
0: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
1: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
1: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: ब्रेकफास्ट विद डीप रांचा.

0: बिल्कुल, ये मुलाकात तो एक बहाना ही है, वरना हमारे और आपके प्यार का सिलसिला काफी पुराना है। लगभग 8 साल तो हो ही गए हैं, यानी कि इस सेशन पर जब मैं आई थी तो 2018 में आई थी, और देखिए 8 साल कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला, और आपसे हमारा प्यार यूं ही बढ़ता गया, साथ ही जुड़ते गए, और अब तो ये सब एक परिवार सा लगता है। कभी कभी हमारे किसी लिसनर का मैसेज नहीं आता तो दिल में ख्याल आता है कि अरे सब ठीक तो है ना, कहाँ बिजी है। ऐसा रिश्ता हो गया है, तो बस चलिए ऐसा रिश्ता हमेशा हमारा यूं ही आपके साथ बना रहे, और आपका ये प्यार मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको कहते हैं नमस्कार, स्वागत है इस शो में, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और अब देखिए संडे का दिन है, आज हो गई है 7 जून, और आज मौसम हम पर मेहरबान है, यानी कि आज बारिश के कोई चांसेस नहीं है। कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से बनाइए, मौसम आज शानदार है। और ऐसे शानदार से मौसम में आज भी चलाएंगे सिलसिला कुछ मीठे कुछ रोमांटिक से गीतों का, जो आपके चेहरे पर स्माइल लाए और आपको आपकी पुरानी यादों में ले जाए। बस आप हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। और आपको ये भी बता दें कि आप 75 पाउंड्स का वाउचर एवरीडे जीत सकते हैं जब आप मनी सेंड करते हैं ओवर 1000 पाउंड्स, या फिर यू कैन गेट 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन.
1: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
2: This is huge.
1: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
2: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
1: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
2: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
1: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
3: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री. सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
1: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
4: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
5: अमन है इश्क मस्ताना.
1: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
4: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
1: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: धार्मिक आस्था अने भक्ति साथे जोड़ावानो सुंदर अवसर माँ कृपा फाउंडेशन यूके लईने आवी रह्यु छे श्रीमद भागवत सप्ताह 7 जून थी 13 जून 2026 सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे श्री विपुल कृष्ण शास्त्री जी जूनागढ़ वाला. वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 210 स्टोनफील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS. रोज सांजे 6 वाग्या पछी प्रसाद नी व्यवस्था रहेशे. डोनेशन अने वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो रश्मिशा 07777287509.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
12: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपन.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
16: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: किशोरदा की आवाज में एक और मस्ती भरा गाना, रोमांटिक गाना फिल्म कभी कभी से, जिसमें म्यूजिक था जहूर खयाम का। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, और आपको गीत पसंद आ रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो ये गाना मेरी ओर से आप सभी के लिए था, और इस गाने को सुनकर हमारे फारूक जी कहते हैं बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत बढ़िया बहुत सारे गाने मैंने क्यू करके रखे हैं, जिन्हें बारी बारी से बजाती रहूंगी, लेकिन आप फारूक जी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रागिनी जी का मैसेज आया है, कहती है आज मेरी मम का बर्थडे है और नील दिव्या शिवम उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स रागिनी जी आपकी ओर से एंड नील दिव्या शिवम पूरे परिवार की ओर से आपकी मम को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। और यस, अब मैं आप सबके मैसेजेस पर एक नज़र डालने वाली हूँ, तो आप सब तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर आप मुझसे कहते हैं कि आपने हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। ऋतु
1: लाइका गोल्ड।
0: तो उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। अनिल सोनी जी वियाना में हमारा साथ दे रहे हैं। कीर्ति जी कहती हैं मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती हूँ, थैंक यू कीर्ति जी। कैंट से हमारी सलमा जी जुड़ी हैं। संध्या भाव सर, हमारी संध्या भाव सर, स्वागत है आपका। एंड फरीदा जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कहती हैं हमारी फरीदा जी कि मैं हमेशा आपको सुनती हूँ और एंड तक सुनूंगी, और मुझे सिर्फ खुशी और सुकून चाहिए जो मुझे आपके प्रोग्राम को सुनकर मिलता है, स्पेशली आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के गाने बजाती हैं। क्या बात है फरीदा जी, थैंक यू सो मच। और आज भी आपको बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमारी जो जोड़ी नंबर वन है ना, उसमें भी आज कुछ ऐसे ही गाने सुनवाऊंगी, क्योंकि आज उसी ज़माने की, या कहूँ आपके ज़माने की एक एक्ट्रेस है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो कौन है जोड़ी नंबर वन में, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल आप सबकी बात की जाए। सो थैंक यू दिलीप जी फैमिली से हमारे साथ हैं, थैंक यू सहर जी, थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको रविवार की शुभकामनाएं। और आपने विचार साझा किया है कि सबसे कठिन चीज़ कार्रवाई करने का निर्णय होता है, बाकी तो आपकी मेहनत है, क्योंकि आप अगर किसी काम को सोच कर काम शुरू करें ये ही बहुत कठिन होता है, और एक बार काम शुरू हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। सो थैंक यू तृप्ति जी, गुरुदेव गांजा साथ दे रहे हैं, स्वागत है मीना लखानी जी, निर्मला जी, अर्जुन जी, महेंद्र पटेल ट्रॉयडन से, एंड ऑफ कोर्स हमारे योगेंद्र जैन एंड उल्लास मृदु जी, एंड सुबह वाली गुड मॉर्निंग भरत गंगाराम जी, मोहम्मद अयूब चौहान, महेंद्र बजारिया, हरीश कत्री तोची जी, थैंक यू वरुणा जी, और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, दुकान पर, शॉप पर, कार में, जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सभी के नाम पर जाता है ये अगला गाना मेरी ओर से।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: यस, अपने जमाने की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म, या कहूँ जितेंद्र के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उस जमाने के बड़े बड़े एक्टर्स से पहले पूछा गया था कि आप इस फिल्म में हीरो बनकर काम कर लीजिए, लेकिन सभी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और बाद में ये फिल्म जितेंद्र की झोली में गई, जो उस समय फिल्मों में काम करने के लिए बहुत ही डेस्परेट थे, और जो भी आया उन्होंने ले लिया और इतनी खूबसूरती से काम किया कि बस इस फिल्म के बाद जितेंद्र का नाम भी उन सभी सुपरस्टार्स में आने लगा जिन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक ने इस फिल्म को हिट कराने में बहुत मदद की। गाने आज भी पॉपुलर हैं और इस गाने को सुनकर हमारी मीना जी कहती है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक तो खूबसूरत गाना और ऊपर से मुकेश की आवाज़ में, जानती हूँ मुकेश जी आपके फेवरेट सिंगर है, तो सारे मुकेश जी के फैंस के नाम पर जाता है ये गाना। उसके अलावा प्रज्ञा साथ हैं, मिस्टर शेख हमारे साथ हैं, निर्मला जी हमारे साथ हैं, स्लाव से सुरजीत जी जुड़ गए हैं, दिव्या जी है, मुनीर सुन रही है हमें केन्या में और कहती है वहाँ पर 12:30 बज चुके हैं। ओ, वहाँ पर तो आफ्टरनून हो गई है, तो क्या आप लंच कर रही हैं? जासू जी हमारे साथ है बेल्जियम से, प्रीति हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़ गई हैं रोशनी। सभी का स्वागत है इस शो में। और आज कोई है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी, और उनका नाम बताऊंगी, लेकिन पहले एक गाना और हो जाए।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.
3: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold.

0: यस लता जी और हरिहरन की आवाज है। फिल्म का नाम डर, शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म से लिया था ये गाना। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बॉलीवुड की एक पुराने ज़माने की हीरोइन है जो जन्मी थी, जिनका नाम तो था खुर्शीद अख्तर, लेकिन फिल्मों में आने से पहले वो बन गई श्यामा। यस, आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है और इसीलिए आज हम उन्हें जोड़ी नंबर वन में लेकर आए हैं। उनके गाने यानी कि श्यामा जी के गाने जिसमें आवाज है लता जी की, सुनवाऊंगी मैं आपको आज की जोड़ी नंबर वन में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और उन्हीं पर पिक्चराइज एक और गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस समर में कहीं जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए और बुक कीजिए फ्लाइट्स के साथ साथ होटल्स भी। और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। विजिट कीजिए साउथॉल ट्रैवल पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Riti Sharma on Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208-706-0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823।
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
13: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
16: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeh Yavo. Only Laika Gold.

0: सुनिए सुल्लता जी की आवाज में उफ क्या गाना है, और ये कहना है हमारे एजाज जी का जो चश्म में बड़े प्यार के साथ सुन रहे हैं। और इसके अलावा आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन्होंने कहा है कि दो बैक टू बैक गानों को सुनकर मजा आ गया। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि हर गाने पर आपको मजा आ जाए और दिल से निकले उफ क्या गाना है। थैंक यू, आप अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं। यह है प्रोग्राम का सेकंड आवर, और याद दिलाते चलूं जो अभी अभी जुड़े हैं आपके साथ कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सैटरडे संडे आपके साथ रहती हूं और इस आवर में सुनवाती हूं जोड़ी नंबर वन। और अब समय है जोड़ी नंबर वन के गीतों को शुरू करने का, लेकिन उससे पहले थैंक यू मालती जी, आई होप आज आप कल से और भी बेटर होंगी, आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा ठीक होगी। थैंक यू जैस्मीन साथ देने के लिए, थैंक यू उल्लास संध्या भावसर, थैंक यू। एंड इसके अलावा जो अभी अभी जुड़े हैं उनको जरूर मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिसमें नाम है रोजी रेजीना आपका, दिनेश सॉरी जी, एसएस बोगल जी, एंड हमारे वजीर जी, आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीति जी, अलका जी और समीना जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और बस अब क्या, चलिए शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा हमेशा की तरह SBI branch online या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। लेकिन आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरीडे जब आप 1000 पाउंड्स से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं, या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Fevertree Ginger Beer. There's no one quite like you, is there? That fiery character. Warming undertones. Mixed, you make a spirited Moscow Mule. But even on your own, you still have the most delectable kick. Fevertree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
1: This is Like a Gold.

0: आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर वन और आज की हमारी जोड़ी है लता जी और श्यामा जी की जोड़ी और ये श्यामा जी की फिल्म भाभी से लिया था ये गाना। आज श्यामा की बर्थ एनिवर्सरी है। आपको बता दें कि पुराने दौर के हिंदी सिनेमा की एक बड़ी ही मशहूर हीरोइन रही हैं जिन्होंने 50s और 60s के दशक में यानी कि जो बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है उसमें कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम किया है। ये फिल्म थी भाभी जिसमें बलराज सहनी थे, नंदा थे, साथ नंदा थी, साथ में श्यामा भी थी। लेकिन आपको कुछ उनके बारे में बताएं, आज जन्मी है वो, आज जन्मी थी 7 जून 1935 को और इनका असली नाम था खुर्शीद अख्तर। लेकिन जब फिल्मों में आई तो इन्होंने अपना नाम श्यामा कर दिया और इसके बाद वो इसी नाम से मशहूर हो गई। श्यामा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1940 के दशक में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और उन्हें सबसे पहले एक्ट्रेस के रूप में जो ब्रेक दिया था वो दिया था डायरेक्टर गुरुदत्त ने। उनकी फिल्म आई थी आर पार 1954 में। इस फिल्म में श्यामा हीरोइन बनकर आई थी और इस फिल्म की सफलता ने श्यामा को रातों रात स्टार बना दिया था।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अब इस फिल्म की बात हुई है तो चलो इसी फिल्म से सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: यस महेंद्र बजारिया जी, आपने सही कहा, गीता दत्त की आवाज थी और ये गाना श्यामा पर पिक्चराइज किया गया था और आज श्यामा ही थी हमारी जोड़ी नंबर वन में। हालांकि मैंने एक दूसरा गीत चुना था जिसमें लता जी के साथ उन्होंने गाना गाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप सबकी फरमाइश पर इस गाने को मैंने बदल दिया। और आपको बता दें कि आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। अपने 4 दशक के लंबे करियर में उन्होंने लगभग 140 यानी कि 140 फिल्म्स में काम किया है और उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिनमें से एक फिल्म ये भी थी, आर पार। और आपको बता दें कि एक और इनकी फिल्म आई थी शारदा, जिसके लिए बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इनकी फिल्मों के कई सुपरहिट गाने हैं जिसमें से 2 गाने हमने आज आपको सुनवाए। और इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर सिनेमाटोग्राफर यानी कि जो कैमरामैन थे फली मिस्री, उनसे शादी रचाई थी, लेकिन सैडली 14 नवंबर 2017 को जब श्यामा की एज 82 ईयर्स की थी, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी लोग उन्हें उनकी चुलबुली अदाकारी, खूबसूरत आँखें और बेहतरीन डांस के लिए याद करते हैं। और आज हमने भी 2 गाने सुनवाकर श्यामा जी को याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। संध्या भाव सर कहती है मजा आ गया। स्वीटी कारा कहती है आपने मेरा दिन बना दिया। प्रज्ञा, ये गाना आपको पसंद है। अलका जी, आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू गीतों को एंजॉय करने के लिए। हमारे साथ संतोष जी, राजीव पटेल, बुशी से जगदीश जी कहते हैं थैंक यू सो मच ये गाना आप बजाने के लिए। अमिता जी, आपको दोनों गीत पसंद आए। आंटी जी, क्या बात है, कहती है मजा आ गया। मितुल पटेल, स्वागत है। शेखर आनंद जी, स्वागत है आपका। सपना स्वीडन से, दिनेश पोपट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स हमारी जैस्मीन एंड मालती जी। चलिए, गीतों को पसंद कर रहे हैं तो बस अब क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट गीतों के दौर से अब आपको 90s के दौर में लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और बता दें।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 PM on Like a Gold. Make it a date.
0: और आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैंस हैं तो बस क्रेजी फॉर किशोर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट होने वाली है जिसमें किशोर कुमार के गाने ही गाए जाएंगे और आपको सुनने को मिलेंगे, जिसे परफॉर्म करने वाले हैं जॉय इंद्रानी, संजय विद हीनल एंड 515 बैंड। और ये सब होने जा रहा है ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल हैं eventbrite.co.uk पर, या फिर उन्हें आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0208-514-5400 पर। और लाइका गोल्ड रेडियो है इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स।
0: और चलिए 90s के दौर में ले जाने से पहले ये भी बता दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है, लिव इन रिलेशनशिप्स, जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेजन और स्पॉटिफाई और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Who are you? Usually the mixer. The tea in G&T. But your delicate fragrance. Hints of lemon thyme. When the tea's this good. Do you even need the G? Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
3: Like our gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
4: travelhub, best service with unbeatable price
3: at all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com.
8: T's and C's apply. Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
12: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
13: मन है इश्क मस्ताना.
11: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
12: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
11: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
14: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
15: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group. 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
16: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
17: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
16: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
17: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
16: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
17: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
16: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
17: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
18: લંડન, ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મેં. હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: मस्त म्यूजिक नदीम श्रवण का और उस पर कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज। हमारी जासू जी और हरीश रुदा कहते हैं, हरीश खत्री जी कहते हैं, एक्चुअली ये गाना हमारे नाम कीजिए। चलिए, हमने आपके नाम किया। एंड गुरुदेव गांजा, थैंक यू साथ देने के लिए। और इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ऋतु हम आपके साथ हैं, सो थैंक यू। और आपको बता दूं कि ये जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को पहले शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई थी, और 1991 में बनने वाली थी ये फिल्म, जिसमें पहले सनी देओल और तबू को लिया गया था, लेकिन बाद में सनी देओल को हटाकर इस फिल्म में बॉबी देओल को डाला गया। और बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ शेखर कपूर ने 1 मंथ की शूटिंग भी कर ली थी, और इस फिल्म की पहले ओरिजिनल हीरोइन करिश्मा कपूर थी, लेकिन करिश्मा कपूर को बाद में दूसरी फिल्म मिल गई और उनको लगा कि ये फिल्म शायद ज़्यादा बेहतर करेगी, उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। और बाद में ट्विंकल खन्ना को करिश्मा कपूर को ट्विंकल खन्ना से रिप्लेस किया गया, और ट्विंकल खन्ना बनी इस फिल्म की हीरोइन, और ये बनी बॉबी देओल और उनकी पहली फिल्म जो अच्छी चली थी। फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा ड्रैग कर दिया था, लेकिन ये गाना मेरे साथ साथ आप सबको पसंद आया है, सो थैंक यू साथ देने के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटा और है, जाने की जरूरत नहीं है, बस रेडियो सेट्स के पास बैठे रहो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए and 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 104.7 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: कभी तो
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
4: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स.
4: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल.
4: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट.
3: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड. कॉल 07300998823.
4: बुक योर टेबल टुडे.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

0: किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का गाना जो 1981 में आई थी, और उससे पहले सिलसिला फिल्म का गीत वो भी 1981 में आई थी, और दोनों फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, और दोनों गीतों को आवाज दी है किशोर कुमार ने। और हमारे फारूक जी कहते हैं कि दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, एक तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखी थी और एक अपने दोस्तों के साथ देखी थी। और क्या खुल्लम खुल्ला आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं फारूक जी। एनीवेज, थैंक यू, आपने दोनों फिल्म देखी और गीतों को पसंद किया है। इसके अलावा आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं, और बस मैं चाहती हूँ कि 1 बजे तक तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और हिलने की कोशिश भी ना करें, और उसके बाद आपको जहाँ मर्जी जाना है जा सकते हैं। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, और इस आवर में एक बार फिर से मैं ऋतु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ और आपको कहती हूँ क्या प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। अब देखिए मौसम अच्छा है, शानदार है, और इस वाले आवर में भी कुछ ऐसे गाने मैंने चुने हैं, और इसमें मैं आपको 2 बैक टू बैक गीत भी सुनवाऊंगी, और साथ ही साथ आज के आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाला गीत भी बजेगा। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक है इस बार के हमारे हिंदी वाले, लेकिन उससे पहले बात हो जाए आज के ड्रीवर्स गेम की। और जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका पहले तो स्वागत है, और दूसरा आपको बता दूं कि ड्रीवर्स गेम में क्या होता है। बॉलीवुड के किसी एक गाने की जो शुरू की 3-4 लाइन्स होती हैं उनसे मैं सिर्फ 3 वर्ड्स पिक करती हूँ, और उनकी मदद से आपको गाना पहचानना होता है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं उसमें पहला है हमको, हमको, दूसरा वर्ड है मुश्किल, और तीसरा वर्ड है दीवाना। पहला वर्ड है हमको, दूसरा वर्ड है मुश्किल, और तीसरा वर्ड है दीवाना। अब आपकी मदद के लिए बता दूं कि ये फिल्म 1972 में आई थी, किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ें हैं, और आरडी बर्मन का म्यूजिक है, और एक बहुत ही प्यारा गाना है। अब बताइए कौन सा गाना है अगर आपको पता चलता है तो। और आंसर अपना भिजवाने के लिए नंबर मैं बता देती हूँ।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: तो एक बार फिर से वर्ड रिपीट कर दूँ, पहला है हमको, दूसरा है मुश्किल, और तीसरा है दीवाना। 1972 में आई थी ये फिल्म, किशोर कुमार लता जी की आवाजें हैं, और आरडी बर्मन का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिला दे कि आज 1 pound आपको देगा 126.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये मनी आपको ट्रांसफर करना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप 75 pounds का वाउचर लेना चाहते हैं तो आपको 1000 pounds से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करना होगा, और अगर 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीतना चाहते हैं तो आपको वो कब मिलेगा? जब आप 2000 pounds से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I'm literally crying.
3: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
2: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
3: Seriously?
2: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
3: Fair play. And now I can stay until the last gag.
2: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट ट्रेवल travelhubworld.com.
7: Location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
10: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
11: अमन है इश्क मस्ताना.
9: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
10: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
9: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June. Attention meat lovers of Rainer's Lane.
12: This is huge.
9: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
12: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
9: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
12: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
9: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
13: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
15: गारंटेड.
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
15: फोन 02085748410.
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
16: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
17: Atif Aslam live in the UK.
16: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
17: Book your tickets now at AXS.
16: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio.
18: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
19: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
20: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मुकेश जी की आवाज में इंदीवर का लिखा हुआ गाना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सफर फिल्म से लिया था ये गाना और इस गीत को भी आप सबने पसंद किया है, तो चलिए ये गाना मैंने आप सभी के नाम पर किया। निवेदनी थैंक यू कहती हैं, मैं बिल्कुल बैठी हुई हूँ और आपका साथ दे रही हूँ, प्रोग्राम सुन रही हूँ। थैंक यू निवेदनी, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है मैं उनके नाम ज़रूर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाने वाली हूँ आपको पहला गाना।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चित्रगुप्त के म्यूजिक पर लता जी की आवाज में जबक फिल्म से था ये गाना, और इस फिल्म में भी श्यामा थी जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: वैसे आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन उनके साथ साथ आज एकता कपूर जो कि जितेंद्र की बेटी हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। आज वो 51 इयर्स की हुई हैं और एकता कपूर टेलीविजन क्वीन, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन चलिए बात करते हैं हमारे आज के दूसरे ब्लैक एंड वाइट क्लासिक की, और इसे बजा देते हैं। इस बार इसमें आवाज है लता जी की।
1: रिचि शर्मा ऑन लाइक ए गर्ल।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जी हाँ, शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर राज कपूर और नूतन की फिल्म अनाड़ी से था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, जिसे आप सभी ने पसंद किया है और ढेरों मैसेजेस आए हैं। थैंक यू तोशी जी, आप भी सुबह से हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं प्रोग्राम इज वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब समय आ गया है बताने का कि हमारे किन साथियों ने आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने को सही सही पहचान लिया है। तो सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम है एजाज जी चैशम से, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कला निधि देसाई, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। प्रीति बेल्जियम से, जासू जी, राजीव पटेल, भारत गंगाराम, दामिनी बहन, रंजू जी, उल्लास, नरेन पटेल, हाजरा, करसन पिंडोरिया, शरफून, सुरेश पटेल, तोची, सहर, शमीम शफीक, निवेदिनी पटेल, दिव्या जी हैरो से, रोशनी, नीलेश तन्ना एंड ऑफ कोर्स हमारी कुकी जी एंड अभी अभी निर्मला जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और जब आप सबने सही जवाब दिया है तो बस मैं आपको सुनवाती हूँ वो गाना जो बना था आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना, जिसे मैंने लिया था फिल्म मेरे जीवन साथी से, आरडी बर्मन का म्यूजिक और ये थी राजेश खन्ना और तनुजा की सुपर हिट फिल्म। सुनवाती हूँ वो गाना अब से बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलूं कि आप अपने हॉलिडे बुक करा सकते हैं साउथ ऑल ट्रैवल के साथ। फ्लाइट्स के साथ साथ होटल्स भी आप बुक करा सकते हैं, इट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 सालों से ट्रस्टेड आपके ट्रैवल एजेंट हैं जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है। तो हॉलिडे प्लान करने के लिए, बुक करने के लिए आज ही विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल पर और उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208574 8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Step into the new grand showroom of Gargels Couture, Southall.
7: at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
17: Bole, tune kya kar raha hai re?
18: Are guru, aapke show ke ticket dhoond raha hoon.
17: Ye to batao, koi pata chala?
19: Guru, guru, is 19 June ko the Prince Regent Hotel mein किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
20: शाहरुख तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
21: शीघ्र शीघ्र।
19: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
22: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
23: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
24: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
25: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में मेरे जीवन साथी फिल्म से था ये गाना, जो था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गीत। 1972 की फिल्म जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था और ये गाना आप में से ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। और अभी भी मैसेज आया है,

0: £1,000 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823. 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंडजी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो हसबंडजी. Be part of a historic grand opening.
5: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
4: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
5: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
4: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Up next, Golden Rock with Unrug on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा ताई और शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज में सुन रहे थे सागर फिल्म का ये गाना। जब भी सुनो भाई मूड बन जाता है, और मूड बना देते हैं आप लोग भी इतने प्यारे प्यारे अपने संदेश भेजकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस के लिए, जिनसे मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए फूड्स की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वैसे हमें आपकी महफिल को सजाने के लिए आपके संदेशों की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का जो उससे पहले थी हॉट सीट पर। दो गाने हमने आपको सुनाया, दो दिल मिल रहे हैं। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि दो दिल मिल रहे हैं, उसके बाद हम जाने नहीं देंगे, और फिर आ चुके हैं सुपर संडे वाली महफिल को सजा कर आपके साथ। मैं हूँ आपके साथ अनुराग। कुछ चंद गानों के बाद हम आपको बताएंगे आज के गोल्डन वर्ड का वो सुनहरा वर्ड, और उसके बाद द गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। तो फुल पैक है संडे की ये सुपर संडे वाली महफिल, कहीं मत जाइए। अगला गाना आपको ख्वाबों से हकीकत तक के सफर में ले जाएगा, वो भी मुफ्त में बिना टिकट के। सुनते रहें
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.50 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold. Leica
3: Gold. Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
9: This is huge.
8: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
9: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
8: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
9: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
8: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one.
10: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
12: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
14: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
13: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
14: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
13: Friends, family ya special night out, make it memorable.
14: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
13: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
14: Book your table today.
15: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
16: Live in London. experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
17: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
19: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
20: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
21: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
22: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kishore Dhawan ki khoobsurat awaaz mein Teen Deviyan film ka gaana sunne the. Film mein Dev sahab mukhya bhoomika mein nazar aaye the aur inki teen deviyan Nanda, Simi Grewal aur Kalpana Mohan ji. SD Barman sahab ne kya kamaal ka sangeet diya tha. जितना भी इसके रिमिक्स गाने बनाए जाएं तीन देवियां फिल्म के कम ही हैं, और कितनी बार मैं सुन चुका, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है भाई। प्यार, इश्क और मोहब्बत की बहुत सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा ज़िंदगी की सीख के बारे में भी सोचें। और अगला गाना 5 मिनट 40 सेकंड का है, लेकिन इस गाने में यकीन मानिए आपको ज़िंदगी की का फ़लसफ़ा समझ में आएगा, पूरी सीख मिलेगी, स्मरण कर सकते हैं या फिर सिर्फ गुनगुना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस गाने से आपको मिलने वाली हैं। तो ये है खजाना सुरों का सुपर संडे वाली महफिल।
0: On Rag with Golden Rag.

0: मुकेश साहब की आवाज में धर्म करम फिल्म का गाना सुन रहे थे। अगर फिल्मों को समाज का आईना कहा गया है ना, तो गाने उसमें बड़ी ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर इस तरह के गाने, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जिस गाने में एक तस्वीर दिखाई है, आप जितने भी गुमान में हों, जितने भी घमंड में हों, जितना भी प्राउड अपने ऊपर करते हों, लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों से निकल कर अगर इस तरह का संगीत आप सुने तो आपको ज़िंदगी का फलसफा यकीनन पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे और किशोरदा की आवाज़ में आपको बड़ा ही नटखट सा गाना सुनाएंगे सुपर संडे वाली महफिल से, एकदम मैच खाता हुआ थोड़ी देर में।
1: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: किशोरदा के फैंस के लिए, शौकीन लोगों के लिए शौकीन फिल्म का ये खूबसूरत गाना आशा ताई और किशोरदा की आवाज में अगला गाना आ रहा है। फिल्म का नाम है सीता और गीता। गाना कौन सा है गेस कीजिए, थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं आपको।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica Gold
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture. Now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
10: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
11: हमने है इश्क मस्ताना।
9: मैं वापस आऊँगा। A film by Imtiaz Ali.
10: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
9: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
14: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
15: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
16: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री। सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com। कॉल 073826 23852.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: किशोर दा आशा ताई की आवाज में सीता और गीता फिल्म का गाना, खास तौर पर आशा ताई की आवाज हेमा जी की आवाज को एकदम जस्टिफाई करती हुई, जिस तरह की हरकत लास्ट में सुन रहे हैं आप। बस अगले गाने के बाद आप अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हो जाइए तैयार। आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए अगला गोल्डन वर्ड हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.98 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस 371.68, श्रीलंकन रुपीस 448.44, बांग्लादेशी टका 163.89 एंड 1 US डॉलर
2: 1.33. Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में आई मिलन की बेला। और अब आगे ये बारी आपको बताने की, आप बताएं हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड जो कि है मस्त, मस्ती, मस्तानी या फिर मस्ताना भी चलेगा। याद रखिए, मस्त, मस्ती, मस्तानी या फिर मस्ताना। मस्त होकर गाने ढूंढना शुरू कर दीजिए।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
3: टू बुक कॉल our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables, available

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Rafi sahab ki awaaz mein aaya Nargis e Mastana. Arzu film ka ye gaana hum tak pahunchaya tha Mahendra Patel ji, Tochi Banesar ji aur Shubham Patel sahab. Bahut bahut shukriya aap teenon ka is gaane ke liye.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: लड़की पसंद है भाई, फिल्म का नाम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुकेश साहब और हेमलता जी की आवाज में पंकज जी, कंचन जी और सुमित जी ने इस गाने को हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। अगला गाना मस्त बना देगा आपकी शाम को।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: किशोर कुमार के फैंस के लिए, किशोरदा के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है उन्हें याद करने का। स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे 19 जून को प्रिंस रीजेंट होटल चिकबेल में। एसएक्स टिकट हैं जो अवेलेबल, वो हैं eventbrite.co.uk पर, और कॉल कर सकते हैं आप टिकट्स की ज़्यादा जानकारी के लिए और इवेंट से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए। नंबर है 0208-514-5400। याद रखिए, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो।
3: ऑन राग विद गोल्ड।

0: किशोरदा की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये शाम मस्तानी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शाम को मस्ताना बनाने के लिए। ये गाना हम तक पहुंचाया है अमिता जी, हंसा मिस्त्री जी, प्रदीप और भावना जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: भाई आप भी अपने इस समर को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं साउथ होल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक, सिटीस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल एंड अर्थ और सब कुछ होगा टोल प्रोटेक्शन के साथ। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट कीजिए साउथ होल ट्रेवल और कॉल कीजिए, नंबर है 0208 574 8410।
2: Holiday break

0: Leica Gold. Leica Extra Podcast Update. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का अपडेट लेकर आपके लिए हाजिर हैं। इस बार होस्ट होंगी रेडियो वाली और टॉपिक होगा, टाइटल होगा लिव इन रिलेशनशिप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है Leica Gold, travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।

0: जिंदगी वहाँ सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
3: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
7: Dil diya galla karange na
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
12: नमस्कार रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा
13: मस्ती भर

0: लता जी और मन्ना डे की आवाज में परवरिश फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था संध्या भावसर जी और जगदीश जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। और अगला गाना आ रहा है रफी साहब की आवाज में, देखें क्या है और किसने भेजा है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.81 पाकिस्तानी रुपीस 371.65 बांग्लादेशी टका 163.87 अफगान अफगानी 85.49 एंड 1 US डॉलर
1: 1.33. Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Absolutely.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold, non-stop classics.

0: लता जी की आवाज में जमीन आसमान फिल्म का बड़ा ही शानदार गाना ये। और इसी के साथ अब वक्त आ गया है आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस बताने का। जल्दी से कायदे प्लस कानून बताता हूं, वो ये है कि हम आपको गाने के तीन ऑप्शन देंगे ए बी एंड सी, उनमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना जो आपको पसंद आ रहा हो और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन वाले गाने को लेकर हमारे पास सबसे ज्यादा वोट्स रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह बनेगा आज का भी गोल्डन राग। तो पेश है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, सच्चाई फिल्म का गाना बिल्कुल सच है। ऑप्शन बी है इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, फिल्म का नाम है आंधी। और ऑप्शन सी है जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। अब इनमें से तीन ऑप्शन आपको चुनना है, तीन में से एक चुनना है, बल्कि तीनों नहीं चुनने भाई, और वो हमें वोट की तरह कास्ट करना है और हमेशा की तरह अपने चुने हुए गाने को विजयी बनाना है बहुत सारे बहुमत के साथ, यानी कि वोट के साथ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए है 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, फिल्म का नाम है सच्चाई। ऑप्शन बी इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। ऑप्शन सी है जी हम तुम चोरी से, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदिवर साहब की कलम से लिखा हुआ वह गाना जिसे सुना रहे हैं जगजीत सिंह साहब, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 126.50 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit like our gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, auto protected.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टाबॉन। Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
9: This tune, the FIH Hockey Pro League, brings one of sport's greatest rivalries to London.
10: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
9: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
8: To open the scoring, he does!
10: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
8: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02
13: 0203963575. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
16: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
17: हमने है इश्क मस्ताना।
15: मैं वापस आऊँगा। A film by Imtiaz Ali.
16: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
15: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
18: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
19: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
18: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
19: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
18: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
19: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
18: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
20: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
21: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
22: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
23: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
22: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
23: Rich, authentic taste every single time.
22: Royal Chai, brewed for business.
23: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
24: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
25: Have you noticed the way fans shout at football matches?
26: Oh, wake up!
25: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
27: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
28: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जगजीत सिंह साहब की जग को जीत लेने वाली आवाज, प्रेम गीत फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा सा गीत। हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंडिवर साहब की कलम से लिखा हुआ, जगजीत सिंह साहब की गायकी से सजा हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, सच्चाई फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन बी है, इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। और ऑप्शन सी है, जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, धरती कहे पुकार के, फिल्म का नाम है। अपने अपने वोट कास्ट करते रहे, अभी भी है मौका।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग संग सुपर संडे वाली इस महफिल के गाने। अगला गाना हम थोड़ा सा आपको विंटेज गोल्ड वाली दुनिया की सैर कराएंगे। और याद रखें, वोटिंग लाइंस अभी तक ओपन है। अपने अपने वोट, अपने अपने मत हम तक भेजते रहें, क्योंकि आपको अपने गाने को क्या बनाना है, विजयी बनाना है। इसलिए वोटिंग लाइन जब तक है ओपन, तब तक आप अपने वोट कास्ट कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: श्री 420 फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप। याद रखिए, बस नेक्स्ट सॉन्ग के बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए वोटिंग लाइंस। इसलिए अपने प्यारे से नगमे को, अपने प्यारे से गाने को, अपने प्यारे से गीत को सुनने के लिए एक बार और वोटिंग लाइंस की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और अपने गाने को बनाएं विजेता।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Boots, we know how great it is getting the best of both worlds. And with Boots brands, you can have it all.
3: Really?
2: Yep. Like skincare that's gentle on your skin and your pocket.
3: Nice.
2: Wellness that gives you more zen and less spend.
3: Love that. And sun care without the scorching prices.
2: That was my line. Discover thousands of expertly formulated products with Boots brands. Quality you trust. Prices you love. Subject to availability in selected stores and online.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.

0: किशोर दा की आवाज में परिचय फिल्म के इस गाने को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, मुसाफिर हूँ यारो। और इसी के साथ बता दूं आप सभी को कि वोटिंग लाइन्स हो चुकी है बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। क्या है वो, थोड़ी देर में आपके साथ।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.74 पाकिस्तानी रुपीज, 371.3 श्रीलंकन रुपीज, 448.1 बांग्लादेशी टका, 163.75 एंड 1 यूएस डॉलर
1: 1.33। लाइका रेडियो। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: ये है लाइका गोल्ड।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: कमाल कमाल कमाल का गाना चुना है आज का गोल्डन राग आप लोगों ने लता जी और किशोर दा की आवाज में। आंधी फिल्म का ये खूबसूरत गाना जिसका संगीत दिया था आरडी बर्मन साहब ने और गानों में जान फूकी थी अपने कलम से गुलजार साहब ने। चलिए से लेते हैं नाम किसने किसने दिया है इस गाने को वोट और विजयी बनाया है इस गाने को। संतोष जी हमेशा की तरह अव्वल नंबर पर, अमिता जी, हंसा वोरा, सईद भाई, महेंद्र पटेल, रानी सुना है, मनु जी, सिम दवदा, आयुब चौहान भाई, सालीग्राम जी, पंकज वर्मा, सुमित चौरसिया, शालिनी कंचन एंड सालिम अख्तर साहब, आप सभी ने इस गाने को दिए हैं सबसे ज़्यादा वोट। आसपास ही रह गए हैं दो, जो ऑप्शन सी था और ऑप्शन ए था। सौ बरस की जिंदगी में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ रहे हैं वीर सरिता जी की जगह पर। अब मेरी होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें लाइका परिवार का ये शो।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
12: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
12: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
11: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
12: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
11: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
12: बुक योर टेबल टुडे।
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
11: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
13: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર,
11: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
11: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે

0: बुक करो स्टार टूर साथे
1: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर
0: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
2: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म एवरी स्पून फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल वार्म मेक पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल
3: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड यर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस
2: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ
4: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
6: Hey there, main hu Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी. व्हाट अ लवली मेलोडियस ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले फ्रॉम द सुपरहिट मल्टी स्टार मूवी वक्त. आई जस्ट लव साधना जी इन द सॉन्ग, शी इज सो प्रिटी.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai like a gold.
3: Like a gold.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: या चुप रहूं
5: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है,
5: क्या है?

0: काम की चीज है. इनडीड मोहब्बत बड़े काम की चीज है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री विद दिस लवली नंबर इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर. वन मोर अमेजिंग ट्रैक्स in the vocals of Mohammed Rafi Sahab, and I will be with you next hour, so stay tuned.
1: London's biggest classics all day. Micah Gold.

0: थैंक यू आपके साथ का, आई मीन 4 o'clock से आप मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू लाइक अ गोल. जब कोई बात बिगड़ जाए, पेन डाउन बाय आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदीवर. क्या प्यारे वाले लिरिक्स लिखे हैं इन्होंने, है ना.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Now the silsila of romantic and melodious songs is continuing on this show. On your favorite radio station, Laika Gold, in the vocals of Rafi Sahab and Lata Mangeshkar. Enjoy this lovely track.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: Location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: रहा है रे? अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप, अल्बर्टन, ईस्ट एंड साउथ लंदन, लोर होम, लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
14: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
15: at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
15: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
17: SonaTours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208-951-0111.
18: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: पल पल दिल के पास, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल. आई थिंक धर्म जी एंड रॉकी गुलजार वाज सो सो सो ब्यूटीफुल इन दिस सॉन्ग. वेल, एक और गाना दिस आवर एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. बट रिमेंबर, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून ऑन लाइक अ गोल, कॉज नेक्स्ट अप इज सैंडी शाह विद द अमेजिंग गोल्डन Rock. I mean, you guys are really going to have a great time. All right, take care. Have a great week ahead. Bye.
1: Non-stop classics. Like a gold.

0: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah. WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323.
1: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Like a Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए.

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेठ करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।
2: बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। बाप भला ना भैया, भैया सबसे

रुपए से सब बनते हैं काम, दुनिया है रुपये के गुलाम। रुपए से सब बनते हैं काम, दुनिया है रुपये के गुलाम। झूठो राम रमैया भाई।

0: बापू ए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: झूठी है सब प्रीत मोहब्बत दुनिया में सच्ची है दौलत
1: हमरी जीवन नैया को बस पैसो पार लगैया भैया पैसो पार लगैया हमरी जीवन नैया को बस पैसो पार लगैया भैया सबसे भला रुपैया
2: बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया।
3: ठीक है बापू मैं जाता हूँ आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
4: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने।
1: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी है एक राजकुमारी जा घोड़ा ले आ कर जाने की तैयारी
4: हीरे की हथली दऊंगो मोती को हार दऊंगो लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
3: क्या शादी भी है व्यापार?
4: हाँ बेटा एक एक के बड़े हजार ही कल मुही को सोड़ तू प्यार से मुंह मोड़
3: अरे पैसे से नाता जोड़।
4: ठीक है बापू मानता हूँ मैं आपकी बात लाइए वो जेवरात
3: ले ले बढ़ा दो हाथ
4: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: Laika Gold.
1: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
2: Lights on, shutters up, staff ready.
1: But today's customers don't start on the high street.
2: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
1: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
2: They walk into your competitors.
1: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574-8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989-972-879.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम।
1: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: This is Like a Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 020-8574-8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: You know how fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
10: Bagged for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
13: T's and C's apply.
14: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर